ना सानू दारू चढ़ते ना ताप चढ़ते अख लड़दी नी उदा रोज लड़दे खादी सपनी बिना ना घरों निकले ते सप कढ़े बिना कित्थे घरे वड़दे।